0: बहुविधि अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होई पुजारी कई कोटाचार व्यवहारी
1: कई कोट पै तीर्थ वासी कई कोट बन भ्रमे उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते कई

0: अष्टपदी जिसका अंतरराज अभमान सो नरक पाती होवत सुवान।
1: जो जाने मैं जोवन वंत सो होवत बेष्टा का जंत।
0: आप उसको कर्म वन कहावे जन्म मरा बहु जोन परमावे।
1: तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान।
0: हर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक ईहा मुक्त आगे सुख पावे।
1: तनवंता होए कर गर्भावे त्रिण समान कस संग न जावे।
0: बहु लश्कर मानुख ऊपर करिया पल पीतर ताका होए विनाश।
1: सब ते आप जानने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत।
0: किसे न बदा आप अहंकारी धर्म राय तिस करी खुवारी।
1: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान जो सो जन नानक दर गए परवान।
0: कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारी।
1: अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार।
0: अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दर्ग है को कैसे गवे।
1: आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे।
0: सर्व की रीन जाका मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए।
1: जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए।
0: जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता।
1: जब तारे को बैरी बीत तब लग नेचर नाही चीत।
0: जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए।
1: प्रभु कृपा से बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छुटै।
0: सहस खटे लख कोठ धावै तृप्त न आवै माया पाछा पावै।
1: अनक भोग बिखै के करै नाह तपतावै खप खप मरै।
0: बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ बिरथी सब काजै।
1: नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए।
0: करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप।
1: करन करावन करने हार इसका हाथ कहां विचार।
0: जैसी दृष्ट करी तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए।
1: जो किस कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग।
0: बुझा देखा करा बिबेक आपे एक आपे ही अनेक।
1: मरे न बैंसे आवे न जाए नानक सदी रहया समाए।
0: आप उपदेशा समझाए आप आपे रचिया सब कै साथ।
1: आप कीनो आपन बेसार सब का सोचता हो करने हार।
0: उसते भिन्न कहो किस होई थान थनंतर एक कै सोए।
1: अपने

0: राष्ट्रपति
1: संत का दुखन यार जा घटा संत का दुखन जमते नहीं छुटा
0: संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन शोभा ते हीन
0: संत के हते को रखे ना कोए संत का दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जी करा नानक संत संग निंदक पीतरा
0: संत का दुखन ते मुख पवे संतन का दुखन काग ज्यों लवे
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
0: संतन का दुखन तृष्णा में जलाए संत का दुखन सब को छलाए
1: संत का दुखन तेज सब जाए संत का दुखन नीच नीचाए
0: संत दुखी का थाव को ना है नानक संत पावे ता होए पीगत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई
0: संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन
0: संत के निंदको सर्व रोग संत के निंदको सदा बिजोग
1: संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत भावे ता उसका पी होई मोख
0: संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे
0: संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिखारी
1: संत का दुखी जन्म मरा संत की दुखना सुख ते तरा
0: संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीच ते टूटा संत का दुखी किता काज ना पहुंचा
0: संत के दुखी को ध्यान परमाईया संत का दुखी उजड़ पाईया
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यो सास बिना मृतक की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किस ना है अपन बीज आपे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर ना राखन हार नानक संत पावे ता लय उबार
0: संत का दुखी इयों बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़ फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक ईदन नहीं त्रापा
0: संत का दुखी छुटे अकेला ज्यों बुआर तेल खत्म आए दुहेला
1: संत का दुखी धर्म त्योराहत संत का दुखी साध मिथ्या कहत
0: जित निंद का तुर ही पया नानक ज्योतिष पावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगाह मिला सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है
1: संत के दुखी की पूजा ना आशा संत का दुखी उठ चला निराशा
0: संत के

0: अष्टपदी मानु की ते बिरथि सब जान देवन को एकै भगवान
1: जिसकै दिया रहे गाए बहुन तृष्णा लागै आए
0: मारा राखा एको आप मानु कै कृष्णा ही हाथ
1: जिसका हुकम बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागै कोई
1: उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
1: नैनो पेख ठाकर का रंग साध संग बिनसै सब संग
0: चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटहे पाप जपिया हर बिंद
1: कर हर कर्म सरबन हर कथा हर दरगह नानक उजर मथा
0: बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार से तन मंत गनी संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछानै एतो तकियो सूझी
0: नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन्हि निरंजन जानिया
1: गुर प्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै
0: साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हो हर जन रहत
1: अंतन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ में सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसना लागै दुख
0: जिसको हर प्रभ चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावै
1: जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक को किसते डरै
0: जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद सब कत सब बूझिया
0: जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
1: न किस जन्मै न किस मरै आपन चलै तो आप ही करै
0: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट
1: आपे आप सगर मह आप अनेक ज्योतरा चाप हो साप
0: अवनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड
1: लख भेद पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार दरै तनमंत
1: प्रभ के सेवक सगल उदारन प्रभ के सेवक दुख विसारन
0: आपे में लय कृपाल गुर का शब्द जप भई निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागै जिसनो कृपा करे बड़ भागा
0: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किस करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग
0: सह सुभाय होवै सो होई करना हार पसाना सोई
1: प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना
0: जिस ते उपजे तिस माहे समायो सुख निधान उन

परमेश्वर आप होवा रखवाला, परमेश्वर आप होवा रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

ई पावन पवित्र शब्द। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दे मुखारबिंद तो उच्चारण कीता है, जिस शब्द अंदर जीव प्राणी मात्र नु सतगुरु जी उपदेश देंदे ने और ए गल समझा रहे ने, हे प्राणा वाले प्राणी मनुख, एक नाम नु त्या, एक नाम नु याद कर, क्योंकि ए नाम ही तेरे नाल जाना है। सो साध संगत, धन गुरु नानक पातशाह दी इस पावन पवित्र शब्द अंदर सानू कलजुगी जीवां नू प्रेरणा देनी बड़ा सुंदर ख्याल करके आओ आपां इस शब्द नू मन विच वसाईए, हिरदे विच इस तरह धारण करिए जिवें सतगुरु समझा रहे ने।

सतगुरु ने एक नाम की प्रेरणा दिती, एक नाम बारे ही समझाया है। आओ सतगुरु गुरु नानक पातशाह का जड़ा पछोकड़ तकी है। साहब श्री गुरु नानक पातशाह उस बार दे इलाके दे रहने वाले ने, जिस बार दे इलाके विच एक बड़ा सुंदर ग्राम, बड़ा सुंदर नगर है, जिसका नाम है तलवंडी। इस तलवंडी दे विच रहने वाले शिवराम बेदी जी होए ने, उन्हां दे दो पुत्र मेहता कालू जी ते उन्हां दे छोटे भाई लालू जी। कहिंदे ने मेहता कालू जी दे ग्रह ते माता तृप्ता दी कुखो शीस नौ ते प्यार नाल आखो धन गुरु नानक। गुरु नानक साहिब ने आगमन लिया। जिस वेले आगमन होया ते मेहता कालू जी पंडित हरदयाल दे घर गए, जाके खबर दिती कि मेहता कालू जी दे घर सत संगत पुत्र दी दात हुई है। हुण इन्हां दे ग्रह विखे केवल एक पुत्री सी जिदा नाम इतिहास विच नानकी आया है। हुण जिस वेले जाके मेहता कालू जी पंडित हरदयाल नूं दसदे ने कि तुसी मेरे घर आओ ते मेरे घर आके मेरे पुत्र दा नाम रखो, ते कहिंदे ने दिन चढ़िया, पंडित हरदयाल जी मेहता कालू जी दे घर आए ते घर आके कहन लगे, मेहता कालू जी तुसा मैनू याद कीता अपने पुत्र दा नाम रखण लई, पर पहला इंज करो, उस दाई नू बुलाओ जिसने अज इस बालक नू जन्म दवाया। कहिंदे ने दाई दौलता नू बुलाया गया, पुछ कीती दौलता जिस वेले बालक दा जन्म होया तू की महसूस कीता, तेनू किवें लगे। दाई दौलता कहन लगी, पंडित जी मेरे इन्हां हत्थां दे विच इसे नगर विच अनेकां बच्चे होए ने, पर मैं ऐसा बालक नहीं वेख्या, मैं ऐसा बालक नहीं तकिया। पंडित हरदयाल जी कहन लगे, दौलता तू कहना की चाहती है, तू केवल इतना दस के बालक ने जन्म लैन लग्या मुख तो पहला बचन की आख्या। कहन लगी, मैं ते इतना कुछ कह सकती हां कि मेरे इन्हां हत्थां विच बालक बतेरे होए ने, पर मैं जिहड़ा भी बालक वेख्या रोंदा तकिया, पर यह बालक जिस वेले होया उस वेले हस रहा सी, इहदे चेहरे ते मुस्कुराहट सी, इहदे चेहरे दा नूर वेख के हैरान होई, ते मैं यह देख रही सां जिस वेले बालक ने जन्म लिया उस सारे घर दे अंदर चानण ही चानण हो गया, इतना प्रकाश मैं जिंदगी विच नहीं देखिया। जिस वेले पंडित हरदयाल जी ने ए बचन सुने ते मुखों सुभाविक गल निकल गई, मेहता कालू जी तुसी वड्डियां भागां वाले हो, तुहाडे ग्रह विखे किसे अवतार ने जन्म लिया है, तुहाडे ग्रह विखे कोई अवतारी पुरुष आया है, हाले मैं बालक नूं तकिया नहीं, दौलतां दे मुंह सुन के मैं केवल इन्ने लफज कह सकदा हां, पर मैनूं बालक दे दर्शन तां कराओ जिदा मैं नाम रखना है। साध संगत दौलतां नूं मेहता कालू जी ने हुक्म कीता, जाओ बालक नूं बाहर लैके आओ, पंडित हरदयाल जी देखना चाहते ने। जिस वेले पंडित हरदयाल जी ने साहिबां नूं बाहर आंदियां तकिया, बस वेखदियां सार मन चुक गया। कहिंदे ने पंडित हरदयाल ने उठ के साहिबां नूं नमस्कार कीती, इतना सत्कार दिता ते वेखदियां सार कहन लगा, मेहता कालू मैं वेख रहा इना दे चिन्ह चक्कर इना दे मस्तक तो इस तरह जापदा है ए जिवें कोई बहुत वड्डे महापुरख हन, ते कोई समा आवेगा इना दे सिर ते छतर चुलणगे, ये कोई छत्रपति बहुत वड्डे राजे होणगे,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੰਨ ਚੱਕਰ ਰੇਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਿੰਨ ਚੱਕਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਖਿਚਾਓ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਐਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਐਸਾ ਵੀਰ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਜੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਨਕ ਵੀਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਤਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੀ।

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच कहा कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच, भावें मैं देग विच, भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां, पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। एक कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला, जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू, मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल, बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औख दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके, तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे, सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच, अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुरु सच्चे पातशाह हजूरी

दिन राती आराधा प्यारो निमख ना की जे ढीला। और ए भी गुजरी राग, और गुजरी राग भी तुम्हार है।

मांगो राम से एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.